गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार नाम पदार्थ पाया अतुट भरे भंडार हर गुण बाणी उच्च रहे अंत न पारा वार नानक सब कारण करता करै वेखै सिरजनहार गुरमुख यंत्र सहज है मन चढ़िया दसमें आकाश तथा ऊंग न भुख है हरे अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए कुप जाए एक बिनस जाहे हुक्मे आवे जाए जमण मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पुवाइन करना कछु ना जाए जिनको कृपा धारियन तिना सतगुर मिले आए सतगुर मिले उल्टी पही मर जीव्या सहज सुभाए नानक भगती रत्या हर हर नाम समाए मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे पाए खुआई जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाए ना बसे मन आई नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मन मुख नाम

बाहर पाखंड सब कर्म करहै मन हृदय कपट कमाए। खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलो आया है। नानक की प्रभ बेनती हर पावे बख्श मिलाए। मन आवण जान ना सुजै ना सुजै दरबार। माया मोह पलेटे अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुत्ता जागया सिर डंड लगा बपहार। गुरमुखा करा उपर हर चेते आसे पाइन मोख दुआर। नानक आप होय उधरे सब कुटुंब तरे परवार। शब्द मरै सो मोआ जापै गुर प्रसादी हर अस्त्रा पै। हर दरगै गुर शब्द सिंजा पै बिन शब्दे मुआ है सब कोय।

रहे दोख सुख एक समान तिना नदरी को आया सबे आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरध समान है जिना अंतर हर सुरत नाही बिच होमे कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर कै शब्द सुभाए ओना मैल पतंग ना लगे जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ ना उतरै

गायन पात्र द्वितीय मल कौ सक आला पहै संग्रागनी पांचौ था पहै गुण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्तंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबहरा खौ खटे पहुरा नंद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठह तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सोहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचौ आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशली पट मंज

के थाप, कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराओ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राग वह गाव है पांचो संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव है आसावरी ते पाछ सिंध भी अलापी श्री राग सिव पांचो थापी सालू सारग सागराय और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वह गाव है पांचो संग बरंगन लाव है सोठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुनगुनी ऊचे सोर सुहाओ पुन कीनी मेघ राग सिव पांचो चीनी बैरा तर गज थरके दारा जबली तर नट आओ जल तारा।

जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ सब दुख सारे जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ

कथना कथी नयावा तोड़ कथ कथ कथी कोटी गुड़ गोट देंदा दे लेंदे तुरबाहे जुगा जगंदर काही खाहे हुमी हूँ जलाए राहु नानू सैवे प्रभाव साचा साहिब साच नाही पख्या पहु अपार आखे मंगा।

सदा विकास सुनियां दुर्भाव काना सुनियां सर्व ब्रह्माइंद सुनियां मुक्षला हनुमान सुनिया जुगा जुगत तनभी सुनिया सा समृत वेदनान मुक्ता सदा विकास सुनियां दुर्भाव काना सुनिया सत्संदो ज्ञान सुनिया सड़का स्नान सुनिया पड़ पड़ बाबा मान

धृती है, के शतरंग क्षत्रिय है, के ब्रह्मंग स्वरूप है, के अनुभव अनूप है, के याद देव है, के आप भीव है, के चित्रंग बहिंदा, के का दीन्दा,

अमित ईश्वर है ब्रह्म ईश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है यजबा कृत है अमृता मृत है निर्दयिक है कलकाय।

करियो सर काहू लिंगरे लटकायो काहू लख्यो हरबाची दिशा मैं काहू बछाको शीसन वायो को बतान को बूजत है बचको मृतान को बूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जाग श्री

सगरी सेठ दिखाए अचंभव वाजुगा सरू स्वंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सेखी अंबार आसिक संगारो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगन मरेश करो रणकाता जिया तो तब शरणी पारे तनका दुष्ट दुखता वे मरे पुरख जमन बापरे देहारे तनके तुम संकट सवटारे जो कर

डोलन ते रख प्रभु नानक ते कर हथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान योग जुगो जुग अटल चौर शतर तख्त दे मालक बाणी के बोहित कलयुग के जहाज गुरु गरीबी नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कृपा की है। अमृत वेले तो सजे हुए पावन देवान की हाजरी भरनी की। अज का अमृत वेले का पावन पवित्र मुख वाक हुक्मनामा श्रवण किया है। तिलंग घर दूजा महला पंजवा तुद बिन दूजा नाही कोए तू करतार करहें सो होए। तिलंग राग की बाणी है गुरु अर्जन देव जी दे बोल ने। दूजे घर विच गाउण दा उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 723-24 उत्ते यह बोल दर्ज ने। तेरे तो बिना कोई दूसरा है नहीं जो बल वाला होवे जो शक्ति वाला होवे जिस विच अथाह ताकत होवे। क्यों पातशाह कहिंदे ओह कुछ हुंदा है जो तू करदा है तू करतार करें सो होए। क्योंकि इस संसार दे विच ओह कुछ ही हुंदा है जो तैनू चंगा लगदा है जो तू करना हुंदा है। बड़ा कीमती बोल है भगत कबीर साहब जी दे सलोकां दे अंदर। वो कहंदे ने कबीर मेरा चितव्या ना करे जो मैं चितवदा हाँ ना मैं सोचदा हाँ जो मैं चाहुंदा हाँ रब जी वो नहीं करदे। क्या मेरा चितवै होए अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए। 15 भगतां दे श्रोमणी भगत कबीर जी दी बाणी दा ए बोल है। कबीर कहिंदे जो मैं लोचदा हाँ वो थोड़ी हुंदा है जो मैं चाहुंदा हाँ उवें थोड़ी संसार विच वापरदा है। ये गल तां सच्ची है कि जो असीं चाहुंदे हाँ उवें बिल्कुल भी नहीं हुंदा। जिथों साड़ी जिंदगी दा मूल पाठ शुरू हुंदा है सब तो पहला पाठ हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्म है जे बुझे ता हउमै कहे ना कोई। एक तो साढ़े किसी खसम मालक का हुक्म हुंदा है ना कि तू इन्ने बजे उठना है इन्ने बजे ड्यूटी ते जाना है आ वो हुक्म मनना कोई औखी खेड नहीं है वो आप सारे ही मन लें। दुनियावी पक्ष तो हुक्म मनना कोई औखा नहीं है। सब तो औखी खेड है मन करके गुरु दे हुक्म नूं मन लेना। यह एक डूंगे भेद की गाथा है कि आखदे ने जेकर कोई इस हुक्म नूं बुझ लवे मन ते आपां सारे लैने अपनी ड्यूटी दे बड़े पाबंदा नियम विच रह के ड्यूटी करदे हां कदे कुताही नहीं करदे। एक ऐसा हुक्म

0: साजन होवन आपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मनमाही मन माहे साजन कहे कहे रलिया कर्म धर्म सबाया अठ साठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे थाप वेखै ते सह पाणा पाया साजन रंग रंगीले रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थिया क्यों पादर जाने आप मसह मत होछिया क्यों राहो पछाणै क्यों राहे जावे महल पावे अंध की मत अंधली विण नाम हर के कछ ना सूझै अंध बुढ़ो तंदली दिन रात चानण चा उपजै शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राहो पादर गुर दसै मन परदेसी जे थिया सब देश पराया किस पह खोलो गंठड़ी दुखी परे आया जगत सवाया कौन जाना बिद मीरिया आवने जावने खरे डरावने तोड़ना आवे फीरिया नाम वे हूने ऊने चूने ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जे थिया सब देश पराया गुर महली करे अपना सो भर पुर दीना सेवक सेवा ता करे सच शब्द पतीना सब दे पतीजा अंक भीजै सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सो हेला बाज अंत अनहद बीना गुर महली करे अपना सो भर पुर लीना कीता क्या सलाहिए कर वेखै सोई ता की कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावै आप जानावै आप अभुल न भुले जय जयकार करे तुद पावे गुर कै शब्द अमुले हीनो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई राग सूही छंत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहलरा हर ते आवहो गुरमुख हर फल पावहो गुरमुख फल पावहो हर नाम ते आवहो जन्म जन्म के दुख निवारे भले हरि गुरे अपने विटहो जिन कार्य सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापहो सुख फल हर जन पावहो नानक कह सुनहो जन पाई सुख सोहलरा हर ते आवहो सुन हर गुण पीने सहज भाए गुरमत सहज नाम ते आए जिन को तोर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन मरण पौ पागा अंदर हो दुरमत दूजी खोई सोजन हल लागा जिन को कृपा किन्नी मेरा स्वामी तिन अंदन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज भाए जुग मह राम नाम निस्तारा गुर ते बुझै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राति केलविक सब गवाए सब को तेरा तू सब ना का हो तेरा तू हमारा जुग मह राम नाम निस्तारा साज न्याय उठे कर्मा ही हर गुण गावे तृप्त अगाही हर गुण गाए सदा तृप्ता सी फिर भूख न लागे आए दह दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए नानक हरा पे जोड़ वे छोड़े हर बिन को दूजा हर बिन को दूजा नाही साज न्याय उठे कर माही एक ओंकार
1: सतगुर प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा भगत जना की हर जियो रखे जुग जुग रखदा आया राम सो भगत

भगत विहुणा सब जग भरमिया, अंत गया पछोतानिया, कोट मदे किन पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई, भगता के कर कारज साचा, हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे नाम निदान सच पाया, सदा अखुट कदे नन कुठे, हर दिया सहज सुभाया, हर जन उच्चे सद ही उच्चे, गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोभा पाया, सूही महला तीजा, शब्द सच्चे सच सुहला, जिथे सच्चे का होए बिचारो राम, होमे सब किल विख काटे, सच रखिया उर तारे राम, सच रखिया उर तारे, दुत्तर तारे, फिर भव जल तरण ना होई, सच्चा सतगुर सच्ची वाणी, जिन सच विखालिया सोई, सच्चे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई, नानक सच्चा साहिब साची, नाई सच निस्तारा होई, सच्चे सतगुर सच बुझाया, पत रखे सच सोई राम, सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम, सच्चे नाम सुख होई मरे, ना कोई गर्व ना जूनी वासा, ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाई परगासा, जिनी सच जाता से सच्चे होए, अन दिन सच त्यायन, नानक सच नाम जिन हिरदे वसिया, न विछड़ दुख पायन, सच्ची वाणी सच्चे गुण गावे, तित कर सुहला होई राम, निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम, सब सच वरते सच्चो बोले, जो सच्चे करे सो होई, जय देखा तै सच परसिया, वरना दूजा कोई, सच उपजे सच समावे, मर जन्मे दूजा होई, नानक सब किशे आपे करता, आप करावे सोई, सच्चे भगत सोहे दरबारे, सच्चो सच वखाणे राम, कट अंतरे सच्ची बाणी, सच्चो आप पछाणे राम, आप पछाणे ता सच जाने, सच्चे सोजी होई, सच्चा शब्द सच्ची है सोभा, सच्चे ही सुख होई, साच रते भगते करंगी, दूजा रंग ना कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया, तिस सच प्राप्त होई, सूही महला तीजा, जुग चारे तन जे पवे, बिन सतगुर सुहाग ना होई राम, निश्चल राज सदा हर किल केरा, तिस बिन अवर ना कोई राम, तिस बिन अवर ना कोई, सदा सच सोई, गुरमुख एको जानिया, तिन पर भिन मिलावा हुया, गुरमति मन मानिया, सतगुर मिलिया ता हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई, नानक कामन कंते रावे, मन मानिए सुख होई, सतगुर से

मिल प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए राम, सच समाए सच वरते सब थाई, सच शिकार करे दिन राती, कामन सच समाई, हर सुख दाता शब्द पछाता, कामन लिया कंठ लाए, नानक महली महल पछाणे।

प्रवरहिया सब थाई राम प्रवरहिया सब थाई मन बसाई पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी सच सिगार बिनाया कामन निर्मल हमे मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते नाम नवे निध पाई।

होया हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत वाणी। जिन मन वसिया सेई जन निस्तरे, घट घट शब्द समाणी। तेरे गुण गावे सहज समावे, सब दे मेल मिलाए। नानक सफल जन्म तिन के राजे, सतगुर हर मार्ग पाए। सतसंगत स्यों मेल पया, हर हर नाम समाए राम। गुर के शब्द सद जीवन मुक्त पए, हर के नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए, गुर मेल मलाए। मनुआ रता हर नाले, सुख दाता पाया मोह चुकाया। आन दिन नाम संभाले, गुर सबदे राता सहजे माता। नाम मन वसाए नानक, तिन घर सद ही सोहिला। जे सतगुर सेव समाए, बिन सतगुर जग भरम भुलाया। हर का महल न पाया राम, गुरमुखे इक मेल मलाया। तिन के दुख गवाया राम, तिन के दुख गवाया। जा हर मन पाया, सदा गावे रंग राते। हर के भगत सदा जन निर्मले, जुग जुग सद ही जाते। साची भगत करे दर जापे, घर दर सच्चा सोई। नानक सच्चा सुहला सच्ची, सच वाणी सब दे ही सुख होई। सूही महला तीजा,

के सहज सुभाए सा तन कंत प्यारी, सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द सिगारी। मेरा प्रभ सच्चा सद ही सच्चा जिन आपे आपे उपाया, नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया। पिर

हर मन तनो गुरमुख पीजे राम नाम प्यारे राम राम नाम प्यारे सब कोले उधारे राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया कर अनहद सुरत समाणी हर हर एको पाया हर प्रभ नानक कृपा तारे सोहिलड़ा हर राम नाम गुर सबदी विचारे हमनी भी प्रवियत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम गुर मेली बहु कृपा तारी हर के शब्द सुभाए राम मिल शब्द सुभाए आप गवाए रंग स्योर लिया माने सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम समाने नानक सुहागण साब डभागी जे चले सतगुर पाए हमनी भी प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कटे सवना विच एको एको राम पतारो राम एक ना प्रभ दूर वसे एक ना मन अतारो राम एक ना मन अतारो सिरजन हारो बडभागी गुर पाया कट कट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद होया मन मान्या नानक ब्रह्म विचारो कट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम हर धूड़ देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा भवेक बुद्धि सुख रैन बिहानी गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद पया दिन राती नानक हर मीठ लगाए गुर सेवन सतगुर सुख दाता हर हर नाम समाए राग सूही महला चौथा शांत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद

पाप भी कर गवाया, हमें रोग गया पपागा सहजे सहज मिलाया, काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो, आन दिन सुख माणी नित रलिया नानक तुर संजोगो, सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़म आई आया बलराम जियो, संत जना कर मेल गुरबाणी गावाइया बलराम जियो, बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया, गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड भरम गवाया, हमे पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा, मन मुख बिछड़ी दूर।

दो सब किल विख पाप गवाया, सहज आनंद पहोया बड़ भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया, हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया।

हर गुण गाया हर वेखे राम हदुरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा पर पूरे अंतर बाहर हर प्रवेक को मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडपागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडपागी पाया हर कथिये अकथ कहानी हिरदे हर हर हर धन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन वैराग जियो हर चौथड़ी लाभ मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम बजी बधाई हर प्रभ ठाकर काज रचाया तन हिरदे नाम वेगासी जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अवनासी एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

प्रभ पाई मिलिया सहज सुभाई अन दिन भोग भोगे सुख सोवे सबद रहे लिव लाए बड़े भाग गुर पूरा पाइए अन दिन नाम ते आए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए पवे पवित शरीरा दुर्मत मैल गई परम भागा होमे विंठी पीरा नदर प्रभु सतसंगत पाई निज कर होया वासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम परगासा अंतर रतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अधेर गवाया ज्ञान प्रचंड वलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्यावण आया ब्यावण आया गुरमुख हर पाया सा तन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जियो आप सवारी सर नरगण गद रंभ मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदे मरे ना जाई राग सूही शंत महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद केरे राम गुरमुख मिले रहिए कर वाजे शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे है प्रभ तेरे तू करता सब थाई एहन से जपी सदा सलाही साच शब्द लेव लाई अन दिन सहज रहे रंग रत्ता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब मेरा वरिहा सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे रवरिहा सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रविया सोई गुरमत सच पाइये सहज समाइये तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ सब दे जापे एहन से नाम ते आए एहो जुगो दुत्तर मन मुख पार न पाई राम अंतरे होमे ममता काम क्रोध चुतराई राम अंतर चुतराई थाए न पाई विरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछोताया बिन नावे को वेली नाही पुत कटंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा अगे साथ ना जाई हो पूछो अपना सतगुर दाता किन विद दुत्तर तरिये राम सतगुर पाए चलो जीवतिया इब मरिये राम जीवतिया मरिये पवजल तरिये गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया बड़ भागी साच नाम ले बुलावे मत परगास पई मन मानिया राम नाम बढ़ियाई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा घर पंजवा ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनों प्या

कखिनो। गुण गोपाल उच्चर रसना सदा गाइये अनदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजे। बिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजे। राग सूही महला पंजवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हो सम्मल थकी जी ओ कदे न बोले कौरा। कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान ने औगण को ना चितारे। पतत पावन हर विरद सदाए कतिल नाही पाने काले। कट कट वासी सर्वन वासी नेरे ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत हरि अमृत सज्जन मेरा। हौ विषम पई हर जियो दर्शन देख अपारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हो चरण कमल पग शारा। प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जे वडे अवर ना कोई। आदि अंत मध्य प्रभ रविया जल थल महियल सोई। चरण कमल जप सागर तरिया पव जल उतरे पारा। नानक शरण पूरन परमेसर तेरा अंत न पारा वारा। हो निमख न छोडा जी हर प्रीतम प्राणी आधारो। गुर संगत कहा सी साचा अगम अगम विचारो। मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे। सुख सहज सुख आनंद कनेरे होमे विनती गाठे। सबके मद सबूते वाहर राग दोख ते न्यारो। नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया। सब अतर्व डीठे जियो ता चरण कमल चित लाया। प्रवि अबनासी हो तिसकी दासी मरे ना वे जाए। धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए। सिमरत सत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मन जन मुन जन त्याया। नानक सरन कृपा निध स्वामी बडपागी हर गा हर हर गाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बारी सूही की सलोका स्नाल महला तीजा। श्लोक महला तीजा सूहे वेस दोहागणी। पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया करे अपने मोही दूजे पाए। मिठा करके खाया बौसा दो बदिया रोग। शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिगार। सहज सच पिर राविया हर नामा उर तार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार। नानक पिर पाया हर सच्चा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूही वे निमाणिए सो सूही सदा समाल। नानक जन्म सवारे अपना कुल भी छुट्टी नाल। पौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पताला। हुक्मी धरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला। सवना रिचक सवाहिंदा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वरतदा आपे प्रितपाला। श्लोक महला तीजा सूबे ता सुहागणी जा मन लेहे सच नाओ। सत गुरे अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा ना ही थाओ। ऐसा सिगार बनाए तू मैला कदे ना हो भी एहनस लागे पाओ। नानक सुहागण क्या क्या चेहन जे अंदर सच मुख उजला खसमे माहे समाए। महला तीजा लोका वे हसूवी सुहवा वेस करी। वेसी सह न पाइये कर कर वेस रही। नानक तिनी सोह पाया जिन गुर की सिख सुनी। ज्योतिष पावे सो थिए इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा।
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ, ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ, ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੂਹੀ ਵੇ ਸੂਹਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸਭ ਵਿਨ ਸਜਾਏ, ਜਿਉ ਟਿਕੇ ਨਾ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਸਚਾਓ, ਉਲਟੀ ਸਖਤ ਸਿਵੇ ਘਰ ਆਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਹਿਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਮੰਦ ਇਆਣੀ ਡੂਮਣੀ ਸੂਹੇ ਵੰਸ ਲਵਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਏ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਪੌੜੀ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਉਪਾਇਨ ਆਪ ਆਪ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਵਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਠੌਰ ਨ ਪਾਈ ਨੀ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਏ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲੇ ਰਜਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਕਾਮਣ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਸੀਲ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰ, ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਤਾਰ, ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਸਭ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਗਲ ਪਹਿਰੇ ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ, ਪੇਈਏ ਸੋਹਰੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਤਿਸ ਪੂਜੇ ਕਰੇ ਸਭ ਸੇ ਸਾਰ, ਔਰ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਰਲੇ ਜਿਸ ਰਾਵੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਸ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨਿਸੀ ਬਿਨ ਧਾਗੇ ਗਲਹਾਰ, ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸੀ ਸਭ ਬੁਰਿਆ

0: तन मन रत्ता रंग सियो होमे तृष्णा मार, तन मन निर्मल अत सोहना पेटिया कृष्ण मुरार। पौ पाओ सब तिस दासो सच वरते संसार, श्लोक महला पहला। वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए, सागर लहर समुंद सर्वेल वर्ष बराहो। आप खड़ाबू आप कर आप पीणे आपाहु, गुरमुख सेवा थाए पवे अनुमत तत् कमाबू। मस्कत लहो मजूरिया मांग मांग खसम दराहु, नानक पुर दर बेपरवा तो दर ऊणा नाहे को सच्चा बेपरवाहु। महला पहला। उज्जल मोती सोहने रत्ना नाल जुड़न, तन जर वैरी नानका जे बुढ़े थिए मरन। पौड़ी। हर सलाही सदा सदा तन मन सोप शरीर, गुरसबदि सच पाया सच्चा गहर गंभीर। मन तन हिरदे रव रिहा हर हीरा हीर, जन्म मरण का दुख गया फिर पवे ना फिर। नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर, श्लोक महला पहला। नानक ए तन जाल जिन जलिया नाम विसारिया, पौदी जाल पराल पिछे हाथ नाम बड़े तित निवंदे ताल। महला पहला। नानक मन के कम फिटिया गणत ना आवई, किति लाहा सहम जा बख्से ता तक्का नहीं पौड़ी। सच्चा अमर चलायन कर सच फरमान, सदा निःचल रव रिहा सो पुरख सुजान। गुर प्रसादी सेविये सच शब्द निशान, पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान। अगम्य गोचर अलख है गुरमुख हर जान, श्लोक महला पहला। नानक बदरा मालका पीतर धरिया आण, खोटे खरे परखियन साहिब के दीवान। महला पहला। नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर, एक पौ लथी नाथिया दो पौ चढ़िए होर। बाहर धोती तुमड़ी अंदर वसन कोर, साध भले अण नातिया चोर से चोरा चोर। पौड़ी। आपे हुक्म चलाए दा जगतंदे लाया, एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया। दै दिसे मन तावदा गुर ठाकर हाया, नावे नू सब लोच दी गुरमत्ति पाया। तुर लिखिया मेट न सकिए जो हर लिख पाया, श्लोक महला पहला। दोए दीवे चौदे हट नाले जेते दी तेते वन जारे, खुले हट होया बपार जो पहुँचे सो चलन हार। धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा परवान। घर आए बजी बधाई सच नाम की मिली वडियाई, महला पहला। राती हो बन कालिया सो पेदा सेवन, दे बग्गा तपे कणा कालिया काले बन। अंधे अकली वाहरे मूर्ख अंध ज्ञान, नानक नदरी वाहरे कवे न पावे मान। पौड़ी। काया कोट रचाया हर सच्चे आप, एक दूजे पाए खुदायन होमे बिच भी आपे। मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संतापे, जिस आप बजाए सो बुझ सी जिस सतगुर थापे। सब जग खेल रचायन सब बरते आपे, श्लोक महला पहला। चोरा जारा रंडिया कुटनिया दीवान, वेदानी की दोस्ती वेदाना का खान। सिफती सार न जाननी सदा बसे सदान, गदो चंदन खोलिए पीसा होस पपान। नानक कूड़े कतिए कूड़ा तड़िए तान, कूड़ा कपड़ कशिए कूड़ा पहनन मान। महला पहला। बार
1: नाले मिली कलान, एक दातन एक मंगते नाम तेरा प्रवान। नानक जी सुन के मन्या हो तेना बिटो कुरबान। पौड़ी। माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया, हमें झगड़ा पायोन झगड़ा जग मोया। ਗੁਰਮੁਖ ਝਗੜ ਚੁਕਾਇਓਨ ਇੱਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਭਉ ਜਲ ਤਰ ਗਇਆ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀਐ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲਭ ਲੋਭ ਪਰਜਾਲੀਐ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਧਾਰ ਅਹਿੰਸ ਨਵਤਨ ਨਿਰਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਬੇ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਛੁੱਟੀਐ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਕੰਤ ਸੁਬਾਈਆ ਜਿੱਤੀ ਦਰਖੜੀਆ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਪੁੱਛੈ ਬਾਤੜੀਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੇ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਤ ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਬਲਿਆਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਸਿਫਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੈ ਵਾਤ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਰਾਤ ਪੌੜੀ ਦਰ ਮੰਗਤ ਜਾਚੈ ਦਾਨ ਹਰ ਕੀ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਨ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਹਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਧਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਕੰਤ ਸਵਾਈਆ ਜਿੱਤੀ ਦਰਕੜੀਆ ਨਾਨਕ ਕੰਥੈ ਰਤੀਆ ਪੁੱਛੈ ਬਾਤੜੀਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੇ ਕੰਤੀ ਰਤੀਆ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਤ ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਫੇਰੈ ਚਿੱਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਸਫਤ ਸਿਫਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੈ ਵਾਤ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਰਾਤ

हर पहलड़ी ला परवर्ती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप त्यागया हर पहलड़ी ला

पापत जाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो हर नाम ते आवो सिमृत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरपुरा रद हो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद हुआ वड भागी मन हार हार मीठा लाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया

निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर विख राम हदूरे हरे आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहया अंतर बाहर हर प्रभु एको मेल हर जन मंगल गाए जान नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए जान नानक दूजी लाभ चलाई अनह

मन जाओ पया बैरागिया बलराम जियो संत जन हर मेल हर पाया वट पाकिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत

गुरमुख मिलया हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर ले बुलाई

0: उस रात बदाय दाया खिला सरो जगत चंगिया बुरिया वक्त धर्म हजूर करमिया अपने
1: ये नेड़े के दूर।

हर हर नाकस हरे प्राण, ऐज मालकियो बखुंठ थान, सुआ पड़ाबत गणका तरी, सो हर नैनो की पुत्री, हर हर करत पूतना तरी, बाल कतनी कपटे परी, सिमरन द्रोपद सोती उदरी, गौतम सती सिला निस तरी, केसी कंस

करे खुल खेत अर्पे नारे सिंगार समेत सगली सिमरत सरबणी सुने असगली सिरमत सरबणी सुने करे नानिंद कवन नहीं गुणे जे ओ अनक प्रसाद कर।

कहा करो संसारा निंदक का परगट पहाड़ा, निंदक सोद साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सदारिया। जोड़

सिद्ध साधक और जोगी जंगम पीर पुर सब थेरे, जे तिन मिला तकीर थी आखा ता मन सेव करे। कागद लून रहे किरत संगे, पानी कमल रहे, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला, सोन मछंदरा नानक बोले, बसकत पांच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जगत ऐसी